देखे शकाएं चकोंगे तो सेरे न्योरना का कोई तक 50 अम्मे जाते सुन देखे शकाएं कितनों निजेके ईजु तो आगे गाजी भी मूत कितनों निजेके माले इन तम्मन नमु का कोसाई थे भी मूत निजेके कितनों की रूरुंग की बोनस तो कुल जगह कोंगे थे 274 आश नंबर 3 किला मूत चंगा मुके बोनस